0: SBS गोरखा रेडियो
1: सैन्य समुदाय मा
0: लाइन भरी
1: ऑन एयर
0: एप मा
1: अनि स्मार्ट स्पीकर मा भन्नुहोस्
2: प्ले बीएसबीएस
0: यो बीएसबीएस गोरखा रेडियो हो।